आकाशवाणी सुनने वालों, भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूँ. योर फ्रेंड जयदेव वन माइक साइड एंड इट्स टाइम टू वेलकम यू टू जेम्स ऑफ इंडिया. जेम्स ऑफ इंडिया कम्स टू यू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एनसीएन रेडियो. एज यूजुअल वी होप दैट यू आर अप एंड अबाउट रेडी, हैविंग हैड अ गुड डे, अ सुपर्ब संडे. एंड we urge you to stay tuned to the voice of Ghana as we bring you some delightful songs and music on this program, Gems of India. Let's put the show on the road.